0: दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: सिटी FM, FM, FM, 89.
3: You're listening to Sufi Hour.
4: Conquer evil with good. Conquer ignorance with knowledge. Conquer anger with patience. And conquer cruelty with compassion.

0: There are hundreds of ways to kneel and kiss the ground. Rumi.
1: नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: साउंड ऑफ योर सिटी एफएम 89
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: सिटी एफएम 89
4: यू आर लिसनिंग टू
5: सूफी आवर

0: I searched for God and found only myself. I searched for myself and found only God.
1: Bulisha.
2: It's 9:30 a.m.
3: We're playing your song.
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
5: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर जहां टेस्टिंग का हर पल होता है कंफर्टेबल स्मूथ और स्ट्रेस फ्री डेली अवेलेबिलिटी नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर AEO पाकिस्तान पाकिस्तान्स मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर Book now at www.aeo.com.pk.
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
6: City FM 89.
7: You're listening to
8: Sufi Hour.

0: Be like the sun for grace and mercy. Be like the night to cover others' faults. Be like running water for generosity. Be like the earth for modesty. Appear as you are. Be as you appear.
1: Rumi. It's 4 p.m.
2: City FM 89.
3: Trending today.
4: Hollywood star Keanu Reeves is in negotiations to star in a new Lego film at Universal Pictures, with director Josh Cooley set to helm the project. According to Deadline, the film will blend live action and animation, making a formal departure from the fully animated format of the original Warner Brothers film.
1: We're playing your song.
5: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
6: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
7: यू आर लिसनिंग टू
1: सूफी आवर

0: दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: सिटी FM 89. You're listening to Sufi Hour.

0: you were born with wings. Why prefer to crawl through life? Imam Ali.
1: It's 6:30 p.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: We're playing your song.
5: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taki ye grow kare 50% faster.
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
7: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर जहां टेस्टिंग का हर पल होता है कंफर्टेबल स्मूथ और स्ट्रेस फ्री डेली अवेलेबिलिटी नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर AEO पाकिस्तान पाकिस्तान मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर Book now at www.aeo.com.pk.
2: City FM 89.
8: You're listening to
9: Sufi Hour.

0: Consider yourself a small body, yet encapsulated within you is the entire universe. Imam Ali.
1: It's 7:30 p.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: You're listening to City FM 89.
5: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इनशो जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इनशो क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
6: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
7: आईओट सीम्स डिफिकल्ट. 4 सेक्शंस, लिमिटेड टाइम, high pressure.
8: Listening, reading, writing, speaking.
7: Not with AEO Pakistan.
8: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
7: Learn strategies that actually work.
8: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
7: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
2: City FM 89.
9: You're listening to
1: Sufi Hour.

0: ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: सिटी एफएम 89।
2: वन नेशन वन डेस्टिनेशन, ड्रग फ्री पाकिस्तान।
3: सिटी एफएम 89।
4: यू आर लिसनिंग टू
5: नॉन स्टॉप हिट।